0: जी
1: मैं
2: आप यहाँ कैसे?
1: जैसे ये सब
2: यानी कि आप भी?
1: जी हाँ ऐसी वैसी
0: खुसुर फुसुर वाली